दिन बुधवार, भद्रपदा कृष्ण पक्ष पंचमी, 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय होगा 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक के ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक हेमलता जी। पेश करेंगे RJ किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास रेडियो प्रोग्राम सुनहरे पल में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी गायिका से जिन्होंने अपने सुरों से हमारे दिलों को छू लिया है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। आज हमारे सिंगर है हेमलता जी। हेमलता भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका है। 1970 के दशक के अंत से बॉलीवुड में एक प्रमुख पार्श्व गायिका रही है। वह शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थी। उन्होंने खुद को फिल्म, संगीत गोष्ठी, टेलीविजन और संगीत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान के एक महान कलाकार बेबी लता से बनी हेमलता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाले पार्श्व गायिका हेमलता जी की। भारतीय सिनेमा में उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।

हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 हैदराबाद में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी है। उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन फिल्म जगत ने उन्हें नाम दिया हेमलता। हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। उनका परिवार रूढ़वादी संस्कृति में डूबा हुआ था और पूरी तरह से हेमलता जी के संगीत सीखने के खिलाफ था। परिवार में संगीत का माहौल भरपूर था। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। इनका ये संघर्ष आगे भी रहा।

बचपन में हेमलता दुर्गा पूजा में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों में छुप छुप कर गाया करती थी। वह परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, वह परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर खुद को गाने से रोक नहीं पाती थी। बचपन के इस छोटी उम्र में ही लता जी किशोर कुमार हेमंत दा आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने इन्होंने गाए। लोगों ने हेमलता को काफी पसंद किया। इन दिग्गज कलाकारों के साथ गाने के दौरान उनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इनका नामकरण कर दिया। फलस्वरूप हेमलता बेबी लता के नाम से मशहूर हो गई।

हेमलता जी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया कि हेमलता लगातार 5 साल तक मेरे लिए गाएगी, साथ ही साथ मैं हेमलता को संगीत का प्रशिक्षण भी दूंगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लगने लगा। सब बेबी लता को अपनी फिल्म में गवाना चाहते थे, मगर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर, आखिर नौशाद साहब के साथ किया गया उनका अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। उस समय इनकी उम्र महज थी 13 साल। जिस दिन बेबी लता उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में गाना गाया, उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना ले चल मेरे जीवन साथी मुकेश जी के साथ गाया। उसके पहले एसडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, चित्रगुप्त एक से बढ़कर एक गीतकार के साथ काम किया। बेबी लता हेमलता के नाम से इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगी।

इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वह उस दौर के अपना सिक्का जमा रही थी जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमलता ने अपने अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। गाना कौन दिशा में लेकर चला गया, ये गाना उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ।

इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। रविंदर जैन के सहयोग से उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर आधारित अधिकांश फिल्मों के लिए व्यापक रूप से गाया। रामायण चौपाइयां, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गीतों को उन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण के लिए अपनी आवाज दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, एक सीरियल में वो अभिनय भी करती नजर आई। वह एक एपिसोड में पारंपरिक मेरा भजन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो गीत नजर आये।

हेम लताजी ने कई भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। 38 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। करीब 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। पाकिस्तानी गायक अताउल्लाह खान के साथ उन्होंने 3 एल्बम के लिए गाने गाए, परंतु इनमें से 2 एल्बम ही रिलीज हुए। हेमलता जी 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह गई। बॉलीवुड से विदाई लेकर वह मैक्सिको चले गई। वहां उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को संगीत सिखाने का काम करने लगी। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित उनका गाना माँ मुझे आने दे चर्चा में रहा। वह एकमात्र भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है जिसने अमेरिका जैसे देश में एक संगीत एकेडमी शुरू की। उनकी एकेडमी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के प्रचार और प्रसार के साथ साथ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस से लेकर पूरी दुनिया में संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस संगीतमय यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमें अपना समय दिया और हेमलता जी के गीतों का रसवाद किया। हेमलता जी, आपके मधुर स्वर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने गीतों से सुखद अनुभव देते रहेंगी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। आज के कलाकार थे पार्श्व गायक हेमलता जी। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरे। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेश।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: नमस्कार, FM 90.0 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लघु कथा नहीं लेकर आया, आज मैं आपके लिए कुछ और ही लेकर आया हूं। और यह है सत्य कथा। हम अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं पैसे को। हम समझते हैं कि शायद पैसे के बिना जिंदगी के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। कई जगह पर पैसा भी ना बेबस हो जाता है, और पैसे वाले भी। मैं आपको आत्मकथा कहिए कि सत्य कथा सुना रहा हूं राकेश झुंझुनवाला की। 48,000 करोड़ से भी ज्यादा धन संपत्ति के मालिक राकेश झुंझुनवाला, उन्हीं की जुबानी है ये बात। वो कहते हैं कि व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका मेरा जीवन दूसरों की नजर में एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मेरे पास और कोई खुशी नहीं थी। पैसे केवल एक सत्य है जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी जिंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था ना, वो मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया है। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को किराए पर तो ले सकते हैं, लेकिन आप बीमार होने के लिए या मरने के लिए किसी को किराए पर नहीं ले सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने के बाद कभी नहीं मिलती, और वो चीज है जीवन। हम जीवन के किसी भी चरण में हों, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें धोखा ना दें, बेईमानी या विश्वासघात कभी भी ना करें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपये या 3,000 रुपये या 4,00,000 रुपये कितनी भी कीमत की जो घड़ी हो ना, उसका काम सिर्फ समय बताना ही है। हमारे पास 100 रुपये का पर्स हो या 500 का पर्स हो या 5,000 का पर्स हो, पर्स के अंदर तो एक सा ही सामान होता है ना। हम चाहे 5,00,000 की कार चलाएं या 50,00,000 की या 5,00,000 की, रास्ता और दूरी तो नहीं बदल जाती ना, हमने पहुंचना तो उसी मंजिल पर है। और जिस घर में हम रहते हैं ना, चाहे वो 300 फुट का हो या 3,000 वर्ग फुट का, अकेलापन दोस्तों हर जगह एक जैसा होता है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं में नहीं है। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें, जब विमान नीचे गिरेगा ना तो कोई क्लास मायने नहीं रखेगी, उसके साथ ही आपको नीचे आना होगा। इसलिए आशा करता हूं कि आपको भी एहसास होगा कि आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। ये सच्ची खुशी है। इसीलिए कहते हैं कि ये अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। जब वो बड़े होंगे ना, तो उन्हें चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी। जीवन क्या है? जीवन को समझने के लिए 3 स्थान हैं, जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को समझ सकते हैं। पहला स्थान है अस्पताल, और दूसरा स्थान है जेल। तीसरा स्थान है जहां सबको जाना है, शमशान। अस्पताल में आप समझेंगे कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, और जेल में आप देखते हैं कि कितनी कीमती है आजादी। शमशान में जाने पर आपको एहसास होता है कि जीवन तो कुछ भी नहीं है। आज जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, कल वो हमारी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आज से, अभी से आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी पैसे का गुरूर है ना, उसको भूल जाइए। और खास तौर से उस गुरूर को अपनी जुबान पर तो कतई आने मत दीजिए। इसलिए विनम्र बने, जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इस संसार में आपको लाने के लिए अपने माता पिता का धन्यवाद दें। और हम तो यही कहते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्राणी सुखी रहें।

0: में नोट करके रख लीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 7056413010। एक बार पुनः आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056413010। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।
1: तो बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

अपनाते हैं, जब हम सैक्रिफाइस का जीवन, जब संयम का जीवन अपनाते एकदम ऑपोजिट तप का जीवन अपनाते हैं, उपवास का जीवन अपनाते हैं और साथ ही में हम लोग दान का जीवन अपनाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन लाता है, हमें अहंकार भर देता है। एक तरफ से भोग हमारे जीवन में लालसा और लोभ भर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला जीवन हमारे जीवन में अहंकार भर देता है। हम इस बात के अहंकारी हो जाते हैं कि हम कुछ दान कर रहे हैं, हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। तो दोनों चीजों के बारे में अद्वैत कहती है कि दोनों चीजें सही रास्ते नहीं है। वो कहती है समय के मारे समय आसक, यानी समय मतलब बैलेंस के साथ जीवन में रह, यानी न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर, यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द लल्लेद इस्तेमाल करती है, समय खेमाले समय आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस, यानी बैलेंस, यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है और वही ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में, और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्द गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

तुम आसमानों में रहते हो, इसीलिए शायद मेरी आरज़ूओं से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो। क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर यह हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

दूर आसमानों में जा बसे हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरते हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों में समझाते हो, रूहानियत का फलसफा बयां करते हो और इन फिजाओं को अपने आंचल में

दुआओं का असर अब रहा नहीं, वरना सजदों में खुदा को तलाशना क्या मुमकिन नहीं होता। सहमे सहमे बुझे बुझे से ये उदास चेहरे इबादत में मसरूफ, इन्हें ही रोशनियों का इंतजार, क्योंकि अब यह अंधेरों से निकल आए एक नए कारवां में शामिल होने के लिए।

तेज बहती धाराओं से गुजरकर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम पल भर।

0: पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए। रेडियो वितस्ता।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर, जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं। ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यवसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरना लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक, दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। हमारे आज के मेहमान थे मिस जोबन रूप छिन्ना जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सोपोरी। ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। शब्द नेक कमाईआं ते इस शब्द नूं आवाज़ दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिआ है सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर जोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

मैं हूं वंश शर्मा, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। मेरा एक नया गाना नए साल के आगमन पर रिलीज हुआ है और ये सॉन्ग मैं FM 90.0 रेडियो वितास्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। और इस गाने में संगीत दिया है आरवी ने।

0: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
2: तोछु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। بوزان روزیو پنن پسندید بودت.

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: तारों से भरी रात हो या दलती हुई शाम, गीतों के बहाने भेजते हैं दिल का पैगाम। दिलों से दिलों को जोड़ने का ये सिलसिला है खास, रेडियो वितस्ता से पहुंचते हैं हम आपके पास। रेडियो वितस्ता से पहुंचते हैं हम आपके पास।
1: वाह, क्या खूबसूरत शुरुआत है। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के सभी प्यारे श्रोताओं को अन्नु का प्यार भरा नमस्कार।
0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आपका रेडियो हमसफर भरत सुपुरी, मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपके और हमारे सबसे मनपसंद शो का, यानी आपकी फरमाइश का। और इस मंच की सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ हम सिर्फ आपकी पसंद के गाने नहीं बजाते, बल्कि हर एक फरमाइश में छिपी आप श्रोताओं की भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि इन नगमों के सहारे दिलों को दिलों से जोड़ा जा सके।
1: सही कहा भारत जी, रेडियो की इन रेशमी तरंगों के जरिए हम आप सभी को सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि पूरे रेडियो वितस्ता परिवार का एक अहम हिस्सा मानते हैं।
0: भले ही ये हमारा सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से अम्बाला की बातें, यहाँ के सरोकार और अपनों की मिठास समेटे हुए हैं, लेकिन इसकी गूंज अब किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से आज रेडियो वितस्ता पूरे विश्व में, दुनिया के कोनों कोनों में सुना जा रहा है।
1: तो चाहे आप अम्बाला की किसी गली में हो या सरहदों पार किसी दूर देश में, आप सीधे हमारे दिल से जुड़े हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपकी भेजी हुई फरमाइशों का सिलसिला, और लेती हूँ पहली फरमाइश जो आई है धनोरी तेलीवाला से। भेजने वाले श्रोता हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म कभी कभी से गीत। गीत के बोल हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

जी हाँ श्रोताओं, सुनाते हैं आपको एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयाल बाग अंबाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता है हनी और अनिल, ये सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश से गीत। गीत के बोल है हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

आइए लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाली सखियां हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका सिंह। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गंगा जमुना से गीत। गीत के बोल हैं दो हंसों का जोड़ा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इनका मनपसंद नगमा।

यह श्रोतो, आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेबर यमुना नगर से भेजने वाले श्रोता है रणबीर जगमाल फूल सिंह समेशर अंगराज और विकास पंजेटा। ये सभी सुनना चाहते हैं एक हरियाणवी गीत फिल्म चंद्रावल से। और गीत के बोल है जीजा तू काला मैं गोरी गनी। इस गीत को आवाज दी है धीरज कुमार और विजया मजुमदार ने। आइए प्रस्तुत है ये हरियाणवी गीत।

और इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म सिकंदर ए आजम से गीत। गीत के बोल हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। आइए सुनते हैं इनका ये मनपसंद गीत।

बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

इसी के साथ अब समय है अगली फरमाइश का, जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म बरखा से गीत, और गीत के बोल हैं तड़पाओगे तड़पालो। इस गीत को अपनी वाणी से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मिलन से गीत। गीत के बोल है सावन का महीना। गीत को आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर जी ने। रणधीर बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन और मनराज। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद नगमा।

0: अगली फरमाइश हम प्रस्तुत करते हैं जो हमारे पास आई है अमाला छावनी से और भेजने वाले श्रोता है हनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शोर से गीत, गीत के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये मनपसंद नगमा।
1: जिंदगी यार

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म अनुपमा से गीत। गीत के बोल है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। इस गीत को अपनी वाणी से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सबका ये फरमाइशी गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कोई पुरानी हिंदी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, पंजाबी या हरियाणवी गीत सुनना चाहते हैं, आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। आपको लिखना होगा अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम और आप कहां से हमें लिख रहे हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश, जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शिकार से गीत। गीत के बोल है देखा है तेरी आंखों में प्यार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और बंशीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, अवनीत कौर संधू और पूरा संधू परिवार। साथ में ये लिखते हैं कि प्रोग्राम पेश करने वाले साहिबान को नमस्कार। हम सभी की ओर से, टीम रेडियो वितस्ता की ओर से, आप सभी को बहुत ही प्यार और प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रस्तुत करते हैं इन सभी का ये पसंदीदा।

और आप सभी के लिए एक और फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कर्तव्य से गीत। गीत के बोल हैं, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। रवि कुमार राहुल जी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब सिंह राहुल। आइए सुनते हैं इनका ये मनपसंद फरमाइशी गीत।

0: सज गई हैं मिठाइयों की दुकानें और तैयार है रंग बिरंगी राखियां, क्योंकि आज दिन है भाई बहन की नोकझोंक और ढेर सारी मस्ती और बेशुमार प्यार को सेलिब्रेट करने का। रेडियो विस्ता परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज के इस खास दिन को बनाइए और भी स्पेशल अपनों के साथ।
1: प्यार, विश्वास और अटूट बंधन का त्योहार है रक्षाबंधन, जो आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कलाई पर सजी एक छोटी सी रेशम की डोरी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहनों का दुलार और भाइयों का सुरक्षा संकल्प है। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके रिश्तों की यह मिठास हमेशा बनी रहे, और हमेशा सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। तो कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम लेते हैं आखिरी फरमाइश, जो रक्षाबंधन के साथ जुड़ी है। ये गीत हम सुनाने जा रहे हैं फिल्म अनजाना से। गीत के बोल है हम बहनों के लिए मेरे भैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, और ये गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी रेडियो संचालिका कृष्णा की ओर से। इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं और आपसे चाहेंगे अनुमति, ताकि अगले प्रोग्राम को तैयार कर आपके साथ फिर रूबरू हो सके। एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: और मेरी तरफ से भी आप सभी प्यारे श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है, क्या कहना कैसी है वो, मेरे ख्वाबों की मूरत है वो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: डालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा।

पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपने आप को ही नछावर कर देना। और ये त्याग किया है दोस्तों आपने, क्योंकि आपके कारण ही तो हम चैन की नींद सोते हैं। सरहदों पर आपके होते हुए दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत ही नहीं कर सकता। आपके इस एहसान का बदला तो हम किसी भी तरह नहीं चुका सकते। हाँ, आपके दिल की आवाज बनकर उन तक आपकी आवाज हम पहुंचाकर आपके दिलों को कुछ सुकून तो दे ही सकते हैं। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हम लेकर आए हैं फौजी भाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: दोस्तों, अगर आप कोई विशेष गीत सुनना चाहते हो या अपने किसी खास को कोई खास गीत सुनाना चाहते हो, तो हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर कॉल करके बताइए। हम आपके अनुरोध पर आपकी पसंद का गीत आप कहेंगे तो उनके और आपके नाम के साथ और आपके संदेश के साथ प्रसारित करेंगे। गीत के अलावा भी अगर आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है या कोई अन्य संदेश आप रेडियो के माध्यम से अपने परिजनों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ कॉल पर कर दीजिए, बाकी काम हमारा, हम बनेंगे ना आपके दिल के हम सफर। आइए शुरू करते हैं फौजी भाइयों के लिए हमारा विशेष उपहार, जरा याद करो कुर्बानी।
2: वो जब याद आए

सच में यही होता है। जब कहकर आते हैं कि बस दो चार महीनों में ही वापस आ रहा हूं, और किसी वजह से छुट्टी पास नहीं होती ना, उधर वो बेकरार होते हैं, इधर आप बेचैन होते हैं। दिल करता है किसी तरह से पंख लग जाएं और उड़कर पहुंच जाएं अपने महबूब की बाहों में, क्योंकि उधर से भी यही आवाज आ रही होती है कि

लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब कुछ मन के मुताबिक ही हो। दोस्तों, आपके बलिदान और हिम्मत और त्याग की गूंज धरती की हर धड़कन में सुनाई देती है। आपके दिमाग को कर्तव्य ने बांध रखा होता है, बस दिल को कौन बांध सकता है? आज तो कोई नहीं बांध पाया। उधर उनका नहीं लगता, इधर आपका नहीं लगता, और दोनों दिलों से जो आवाज आती है वो आवाज होती है ये।

देश की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों, सिर्फ आपके परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पिता, भाई, बहन, पत्नी सब आप पर गर्व महसूस करते हैं और आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हाँ, इंतजार तो आप भी बेसब्री से करते हैं। खट्टी मीठी कड़वी नमकीन भावनाओं को विराम तो तब मिलता है जब घर से चिट्ठी आती है।

आपका समर्पण और साहस हम सब के लिए देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। हमें गर्व है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ फौज हमारी रक्षा कर रही है। आपके साथ साथ आपके परिवारों का समर्पण और त्याग, वाकई ये सब कुछ काबिले तारीफ है। मिलन को आतुर प्रतीक्षारत नयन बिस्तर में अपने कोरों को पोछते हुए दिल से लगाकर तुम्हारी तस्वीर को चूमकर बुदबुदाते हैं

हर फौजी भाई, चाहे वो किसी भी बटालियन में हो, किसी भी रैंक पर हो, हर रोज हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। आपके इस साहस को पूरा देश प्रणाम करता है। हमारे लिए तो आप आदर्श हो ही, आप किसी और के भी तो हीरो हो जिन्होंने

फौजी भाइयों, पूरे भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। आपकी हिम्मत और जज्बा हर दिल में बसता है, हमारे लिए और आपके लिए प्यार, मोहब्बत, घर परिवार, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। इसके लिए आप कुछ सोचते ही नहीं, और ना ही आपके जीवन में शायद इसके अलावा कोई बात होती है। हम आपकी इस सोच की कदर करते हैं। अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी तो नहीं इसके अलावा जो आपके दिलो दिमाग पर हो, इसीलिए उनकी शिकायत आपसे अक्सर ये रहती है।

दोस्तों, अब अपने रेडियो दोस्त रेडियो हमसफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा इसी कार्यक्रम को एक नई सुगंध एक नया फ्लेवर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी। रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: ये अम्बाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

गुलाबी मौसम में खुशबू की तरह महकते रहो, जानते ही मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, यूं ही मुस्कुराती रहो। जब मोहब्बत तुमसे है तो ख्वाबों के आईने में हमारे बनकर रह जाओगे। आज रहने दीजिए ये गिले शिकवे, आज की शब हम न जाने देंगे, क्योंकि खुशबू बनकर आए हो एक तवील मुद्दत के बाद, यूं ही इस गुलाबी मौसम में महकते रहो हमारी खुशबू बन।

शक्लें बेशक बदल चुकी हों, पर एतबार पहले ही की तरह अटल है। सोबती सही रास्ता दिखाती है और मंजिल का पता भी बताती है, चाहे हम दूर तक चलते रहें, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ ही जाते हैं, यह सोचकर कि कोई मुझे ढूंढ तो ले।

हम से अक्सर वाबस्ता रहती हैं दर्द की दास्तानें। तुम सुनकर क्या करोगी? जो लिखा है वो मिटाया नहीं जाता है। चुप हो जाते हैं जब जब बीते लम्हों में तुम्हें खोजने की कोशिश करते हैं। ख्वाबों के इस शहर में क्या ये सब कुछ मुमकिन है जो हम तुम्हें पा सकें?

वो जो चाहती बांटते रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, पर इसके बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रही, क्योंकि वो जीने का अंदाज जानता था।

जानता था वो दिल बहलाना। कहीं दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था।

दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

श्रोतावास सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के लिए बस इतना ही। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। हम प्रसारण करते हैं अंबाला छावनी से, और ये है आपका सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, जिसकी स्वीकृति मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अंबाला के लिए। हम बात करते हैं अंबाला की, और हम चाहते हैं कि आप सभी के साथ ये रेडियो स्टेशन अंबाला को विश्व पटल पर रखने की जो कोशिश है उसमें हम सभी लोग मिलकर कामयाब हो जाएं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहड़ा। आज के लिए बस इतना ही, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01। जाने से पहले आपको हर दिन मैं कुछ जानकारी देता हूं और कल के कार्यक्रमों का विवरण भी और अपना नंबर भी बता देता हूं, पर उससे पहले आज के दिन की खास बात करेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और हमसफर भरत सोपोरी, मेरा बहुत सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार आपके पसंदीदा कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से। ढलती रात के साथ अब वक्त है आज के प्रसारण की समाप्ति का और उसको विश्राम देने का। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक उम्मीद है हमारी आवाजों ने आपके दिल में एक मीठी जगह बनाई होगी। सांस्कृतिक एवं वैश्विक महत्व आज के दिन का, यानी 2 सितंबर के दिन की अगर बात करेंगे, आज का दिन विश्व स्तर पर विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो हमें प्रकृति के अनमोल उपहारों और स्वस्थ प्रद जीवन शैली की याद दिलाता है। दूसरा, इतिहास के पन्नों से 2 सितंबर का इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान है। इसी दिन वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, और वर्ष 1946 में हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी थी। श्रोताओं, वितस्ता सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कश्मीर की पावन नदी जहलिम का वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, जो अविरल बहती है, जीवन देती है, संस्कृत और मोहब्बत का संदेश बांटती हुई आगे बढ़ती है। और इस वितस्ता को हम वहां से लेके यहां अंबाला की धरती पे आज से 36 वर्ष पहले ले आए थे, और 36 वर्षों से ये अविरल धारा अंबाला के हर एक वासी का रास्ता बना है भारत सोपोरी के माध्यम से। 35 वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत हमने, यानी मैंने, अंबाला के हर एक व्यक्ति की सेवा की, और उसके बाद अब ये अंबाला की आवाज है जिसके माध्यम से हम आपके साथ रोज जुड़ते हैं, रोज बात करते हैं, और रोज उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे। ठीक इसी वितस्ता नदी के प्रवाह की तरह हमारा रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज भी आपकी जिंदगी में हर दिन मिठास, शिक्षा, सकारात्मकता और भारतीय संस्कृति की खुशबू घोलने का प्रयास करती है। आज के इस पावन और खूबसूरत दिन को विदा कहते हुए कुछ पंक्तियां आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम अर्पण करना चाहूंगा। आज की जो पंक्तियां हैं आप सभी के नाम, ये है, नदियों की तरह बहना ही जिंदगी का नाम है, नदियों की तारा बहना ही जिंदगी का नाम है, हर रात के बाद एक नई सुबह का पयाम है, वितस्ता की पावन लहरों सा बहता रहे ये प्यार, वितस्ता की पावन लहरों सा बहता रहे ये प्यार, हमारी आवाज से सजता रहे आपका हर संसार। जी हां दोस्तों, हमारी आवाज से सजता रहे आपका हर संसार। तो ये थी आज की पंक्तियां और आज का विषय। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं और बताता हूं हमारा नंबर, जहां पर आप अपनी जानकारी, अपना फीडबैक, अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, और अगर आप अपने अनुभव, एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता को कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर हमें इसी नंबर पर लिख लीजिए, हम आपको आमंत्रण देंगे, और साथ में सभी अंबाला के व्यवसायी लोगों को हम अनुरोध करते हैं कि वो अपना विज्ञापन इस सामुदायिक रेडियो से करें, ताकि हम आपकी बात सभी अंबाला वासियों तक पहुंचाएंगे और हम और अच्छे कार्यक्रमों को तैयार कर आप तक पहुंचा सकेंगे।
जल्दी से कल के कार्यक्रमों का विवरण। 3 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार को हम जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत करेंगे 5:58 पर, वंदे मातरम और एक सुविचार लाएंगे आपके लिए, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर संगीत का कार्यक्रम होगा सरगम एपिसोड 5, पेश करेंगे आज ये किरणी। 8:30 बजे आप सुनते हैं सकारात्मक कहानियां यानी पॉजिटिव स्टोरी। कल आप सुनेंगे एपिसोड 31, शीर्षक होगा लाडली बेटियां। जरूर सुनिएगा ये कहानी, पेश करेंगे नरेश शर्मा अपनी मधुर आवाज में। 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी किसे एपिसोड 6, कल हमने फिल्म चुनी है काला पत्थर, पेश करेंगे राहुल अलियान। और 10:05 पर कार्यक्रम विश परिचर्चा, हमारे साथ होंगे एक्टर डायरेक्टर विशाल शर्मा डारले, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे आप सुनेंगे साइबर क्राइम अलर्ट पर एपिसोड। 6 बजे भक्ति संगीत। 6:30 बजे शाम में गजल। 7 बजे बॉलीवुड की सुनहरी यादें मोहम्मद रफी पर कार्यक्रम तैयार किया गया है, पेश करेंगे रमेश मराठा। और 8:30 बजे उन्हीं की आवाज में कार्यक्रम सुहाना सफर, और कल की कड़ी होगी तुम भीग जाते। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। अपना फीडबैक भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई, इसको तैयार किया हमारे कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। रेडियो विथस्ता 90.0 FM से मैं आपका अपना रेडियो दोस्त भारत सोपोरी अब आपसे चाहूंगा इजाजत। अपना और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिएगा। कल सुबह 5:58 तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।